0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Surya Sun. Studio time.
2: It's 6 p.m.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुर्गुन नगर पालिका 5 सोलु

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: अभियान चेक सुन एफएम स्टुडियो टाइम
4: इट्स 7 AM बिहानको 7 बजे
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुदकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: उज्जवल एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य फिल्म स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 AM दिनको 8 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलू दुदको नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
1: बिहानको 8 बजे
2: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स पालिको हो
1: राष्ट्रको शान किसान
2: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युसन्स
3: यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 MHz अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम बदलिदो नेपाल

0: बोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: टाइम
0: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंडा नगर पालिका पांच सोलू खुम्बू।

0: को जनहित में जारी संदेश
1: पोषण युक्त खाने कुरा जीवन का रंग पूरा मन माता की तन मन
0: स्वास्थ्य जीवन को आधार हो संतुलित र पोषण युक्त आहार विशेष करी गर्भवती महिला सुत्केरी आमा र पांच वर्ष मुनि का बाल बालिकाहरूलाई पोषण युक्त खाना को विशेष आवश्यकता पर्दछ। दैनिक खाना में दाल भात हरियो तरकारी फल फूल दूध तथा अन्य पोषण युक्त खानेकुरा समावेश गरौं। जन्मेको एक घण्टा भित्र शिशु

0: सोलू एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम
3: चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुर्कुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: सोलू एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संक्षेप सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: रैपिड एयर बिहान को 11 बजे
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुर्गु नगर पालिका 5 सोलू कुंभू
2: आदरणीय श्रोताबिन तपाईं अहिले सुन्नु भएको छ सुन्नु एफएम सुन्नु एफएममा अब तपाईंले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली लोकगीतहरू

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदली सेवा ग्रही महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष मृत्यु को सेवा प्राप्त होने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष द्वारा संपर्क राख्व अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में प्रति को प्रलोभन में नगरी आर्थिक सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आए में गुनासो सुनी अधिकार कार्यालय प्रमुख सुनवाई संपर्क राख्स
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराजनगर
0: आर्थिक वर्ष 2084 का प्रदेश संचालन कर आयोजना कार्यक्रम को प्रस्ताव आवेदन संबंध में कोशी प्रदेश योजना आयोग
2: आयोजना को वर्गीकरण आधार तथा मापदंड निर्धारण और आयोजना वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2082 बंदुन स्थानीय तह प्रभुत्व कार्यालय आर्थिक वर्ष 2083-84 में कार्यान्वयन होने आयोजना कार्यक्रम के संबंध में इस आयोग मिति 2082 साल चैत्र 9 गति आयोजना वन सूचना प्रणाली मार्फत प्रस्ताव आह्वान भएको 2083 साल वैशाख 5 गति घटना प्रणाली को प्रयोग मार्फत आयोजना प्रस्ताव बनाने

0: सूचना अधिकारी 9852-85-12-26 र काउन्टर 0-38-52-04-03।
1: समय नै महसुस दिन उचाल परिस्थिति निर्माण गरौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा गुणहितमा सारी सन्देश।

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने से निश्चित समय अदालत सेवा ग्रही महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय पूर्वांगण सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष मुख्य को सेवा प्राप्त करने सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कक्ष को प्रलोभन में नजरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई ग्रास आए में अधिकार कार्यालय प्रमुख संपर्क
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
0: आर्थिक वर्ष 2084-84 का प्रदेश संचालन कर आयोजना कार्यक्रम को प्रस्ताव आवेदन संबंध में कृषि प्रदेश योजना आयोग
2: आयोजना को वर्गीकरण आधार तथा मापदंड निर्धारण का आयोजना वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2082 बंदुक स्थानीय तह प्रभुत्व कार्यालय आर्थिक रूप से 2084-84 में कार्यान्वयन होने आयोजना कार्यक्रम के संबंध में इस आयोग मिथि 2082 साल चौथे नौगति आयोजना वन सूचना प्रणाली मार्फत प्रस्ताव आह्वान भैया 2084 साल वैशाख मार्फत घटना प्रणाली को प्रयोग मार्फत आयोजना प्रस्ताव बने कृषि प्रदेश सरकार मार्फतका कार्यालय स्थानीय तहहरूलाई जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। साथै आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धमा स्थानीय नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तह र संस्थाको कार्यक्षेत्र रहेको स्थानीय तह तथा आयोजनाको सम्बन्ध कार्यक्षेत्रमा रहेको प्रवेश कार्यालयमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिन्छ। प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना विस्तृत आएको वेबसाइट pcc.cc.gov.np हेर्न सबैमा यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ।
1: प्रदेश सरकार प्रदेश योजना आयोग विराटनगर नेपाल
0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदालत सेवा ग्रही महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय पूर्वांगण सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष मुख्य सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख् अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कक्ष को प्रलोभन में नजरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई ग्रास आए में अधिकार कार्यालय प्रमुख संपर्क
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
0: स्थानीय तह में दर्ता भएका ई रिक्सा को दर्ता प्रतिनिधि तथा नवीकरण करने संबंधी सूचना
1: यातायात व्यवस्था कार्यालय में दर्ता भई स्थानीय तह में हस्तांतरण भएका ई रिक्सा पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालय में दर्ता गर्दा यदि कार्यालय ने जारी गरेको सकल विरूपित भएमा सोको आधार में स्थानीय तहबाट सुरुवात फिर्ता गरेको निष्ठा समेत राखे सोही दर्ता नंबर कायम होने गरी अघिले खड़ा गरिन्छ। यदि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले जारी गरेको सकल बिलभुक नभएको तर स्थानीय तहले जारी गरेको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र बिलभुकमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले जारी गरेको सवारी दर्ता नम्बर समेत उल्लेख भएको खण्डमा स्थानीय तहले जारी गरेको सकल सवारी दर्ता प्रमाणपत्र बाँकी प्राविको नम्बर कायम गरी बिलभुकको प्रतिलिपि दिनेछ। त्यसै गरी यदि यातायात कार्यालयले दिएको जाँच पास प्रमाणपत्रको सकल करीमा पनि सोही सकल पत्रको आधारमा यातायात कार्यालयले जारी गरेको दर्ता नम्बर कायम गरी सवारी दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि जारी गरिनेछ। सोही स्थानीय तहमा दर्ता भएका वा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भए स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका यी रिक्साहरूको सवारी दर्ता अभिलेख किताब स्थानीय तहमा जेएनजीको आन्दोलनको क्रममा जली नष्ट भएको अवस्थामा स्थानीय तहमा दर्ता भएका एवं कर चुक्ता गरेको प्रमाणको आधारमा सकल सवारी दर्ता प्रमाण पत्र बिलभुक समेत राखी सरुवा दर्ता सरह दर्ता गरिनेछ। सेवा ग्राहीले नागरिकताको फोटोकपी दुई प्रति हालसालै खिचिएको फोटो सवारी दर्ता प्रमाण पत्रको फोटोकपी सवारी साधनको इन्जिन नम्बर र चेसिस नम्बर देखिने गरीको फोटो सवारी साधनको पूर्ण भाग देखिने गरीको फोटो संलग्न राख्नु पर्ने छ। यदि स्थानीय तहमा सवारी कर तथा नवीकरण समेत गरिएको हुँदैन उक्त शीर्षकमा थप कर लाग्ने छैन।

0: না আস্তি মারখানা কি মেনে আয়গো ফের বিজুলি কে বল্ব জ্বালে সা এই কাঞ্চি দাদা পতল গাইরে বিজুলি কে বল্ব লের আয়গো দিদি ছিমকো ওসিন কিনে রাখসারি সাপনু রামরো অরিজিনাল বিজুলি কা সামান হরু কিন্নু পারনি তা যাহা পায়ে তেই বাটা ল্যাউডা এসে ডুপ্লিকা হুনছ তা অরিজিনাল বিজুলি কা সামান কিন্নু তা ও সল্লির কো বর্ষা ইলেকট্রনিক্স মা জানু পর্ছ के तपाई घर तथा अफिस को लागी बिजुली को राम्रो क्वालिटी को सामान हरू खोज्दै हुनुहुन्छ यदि क्वालिटी को इलेक्ट्रोनिक सामान हरू लिन चाहनुहुन्छ भने सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका पास सल्लेरीमा रहेको वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड सर्भिस सेन्टरमा सम्पर्क राख्नुहोस् यहाँ विभिन्न ब्रान्ड का गुणस्तरीय बिजुली का सम्पूर्ण सामान सर्भिस केबल मल्टीप्लग पावर सकेट लिस्टी अर्थिङ को तार अर्थिङ रड अर्थिङ केमिकल उपलब्ध छ साथै एलसीडी एलईडी टीभी साउन्ड सिस्टम कम्प्युटर ल्यापटप हाउस वायरिङ का सामानहरू चार्जवाला टर्च लाइट तथा इलेक्ट्रोनिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा पाइन्छ सट्याङमा परेर जलेका सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि मरम्मत गरिन्छ
1: साथै डिप फ्रिज फ्रिज एसी पाउनका साथै मरम्मत पनि गरिन्छ
0: प्रोपाइटर अजय पन्छियार सम्पर्क नम्बर 9809090094 र 9833668418 वर्षा इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड सर्भिस सेन्टर सोलु दुतकुण्ड नगरपालिका पास सल्लेरी सोलुखुम्बु
1: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकदेखि 30 मिटर भित्र

0: 各位，有请您先说，掌声欢迎热烈。
1: बाजार बचाओ व बचाओ लंचनी हिंसा सामाजिक अपराध हो। बाइडेन का लंचनी हिंसा को दुखीमा से निपटन हिंसा समिति असंतोष पार्टी है परिचित मतदार जैसे सक्षम अभिभावक ने आपका छोराछोरी को व्यवस्था राख बाल बालिका को चाल चलन पानी बेहोना अस्वाभाविक परिवर्तन आयोग हो सक्षम इसके पहले उन्हीं तत्काल कुरा कर बाल बालिका सह नियमित संवाद करो आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में आज

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्र
1: जापानीज उच्च प्रहरी उत्पादित
0: उत्कृष्ट माइलेज
1: राम्रो रिसेल मूल्य
0: टिकाऊ र भर पर्दो
1: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
0: BS6 तथा नयाँ नयाँ दर्शन बजार में लंच भइरहेको
1: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
0: हाम्रा सेवाहरू
1: ओखलढुंगा र खोटाङको विक्टन बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित होंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
0: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विस में सेवा
1: एक्सपेंस गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
0: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुगतान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
1: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारी भुजाङ ओखलढुंगा
0: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852880022 र 9842880300

0: 102.2 MHz
1: Sound check. City FM is studio time.
2: 3 p.m. News को 3 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदूत को नगर पालिका 5 सोलु

0: Sì, Fakura, proszę widziałem.
1: Dzień Radio Network.
2: A chwilę Dinsoku, Tim Baziu.
3: समय किसान पाए प्रोडक्ट्स प्राली को हो
2: राष्ट्र को किसान
3: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस।

0: world class entertainment को IPTV सेवा प्रदान कर रहे जयशाउन इंटरनेट नेपाल को एकमात्र नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई 6 प्रगति भाई को वाईफाई 6 बंदरों संग उत्कृष्ट जवान प्रदान कर रहे जयशाउन इंटरनेट साथ ही इंटरनेट टीवी व अन्य सेवाओं सजिले व्यवस्थित कर रहे एटा उपयोगी सेल्फ केयर ऐप माई जयशाउन ऐप
1: This is me, and I work for Michelin, worldwide franchise, India to Michigan, and I'm here to tell you what I have to offer, like truck passenger, tires, they're awesome, super, wonderful, excellent, amazing, number one, when you go, it's all about safety, when I go in transit, I'm safe.

टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दूध को नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू।

0: बाद हित बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मित्र स्थित है तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन सकता
1: हुंडा का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रणाली थप उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भर भर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया दर्शन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सबै उम्मीद समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: उखलढुङ्गा र खोटाङ विज्ञान बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडाका सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाने का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: उखलढुङ्गाको लागि आधिकारिक विक्रेता होम मल्टीपर्पज सर्विस प्रणाली सिद्धिचरण नगरपालिका गुरुमारी भुजान उखलढुङ्गा
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852880222 र 9842380300

0: बोलू एफ एम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: 6 PM साँझको 6 बजे
0: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुत्कु नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु
1: किसान
2: अ कम्प्लिट पाइपिङ सोल्युसन्स

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुने एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Sony FM. It's studio time.
0: It's 7 p.m. Start to start with it.
4: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दूध कुंड नगर पालिका 5 सोलू कुंडू

एमबीएस को प्रश्न पत्र बाहर प्रकरण में दुईजना पकड़ सात दिन भित्र छानबीन समिति के प्रतिवेदन बुझाने अध्ययन विदा दुरूपयोग करने 41 प्राध्यापक करीब 10.5 करोड़ रकम असूली कर रोल्पा में पहरो में पूरिएका दुईजना को शव फेला पड़े बाढ़ी पहरो का गलत सूचना रोक्न टिकटक को नया सर्च गाइड नेपाल शुरू भएको छ। अब को तीन दिन अधिकांश क्षेत्र में भारी वर्षा को संभावना कम छ। भोलि नागढुंगा सिस्टी खोला सुरूंग मार्ग उद्घाटन हुँदैछ। लुम्बिनी में कांग्रेस सरकार बाहरने 5 मंत्री को सामूहिक राजीनामा मधेशमा 3 दलीय गठबंधन कायम रहने मुख्यमंत्री यादव को दावी छ। एक वर्षमै यूरोप का 35 देश में करीब 90,000 नेपाली श्रमिक पुगेका छन्। रोमानिया में नेपाली को आकर्षण बढ़्दो छ र कावा पुरूष भलिबल चैंपियनशिप में नेपाल लगातार पराजित भएको छ। फाइनल खेल भने पर्सि हुनेछ। हस्त आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी राजेन्द्र रिजाललाई धन्यवाद। भोलि साउन 11 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौंला। अहिलेलाई सुशीला श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।

0: Sound check. Studio FM. Studio time.
1: It's 8 p.m. आपको 8 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगर पालिका 500

0: बोक्स विरूद्ध चेतना अभिवृद्धि गरौं, समाजलाई सभ्य बनाऊ।
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
2: हिस्सा हिस्सा सदैभरी रोजे।